0: BFBS Gorkha Radio.
1: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बता दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।